सभी ने जवाब दिया है। कंचन की आवाज है इस गाने में और अब जल्दी से अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेम रोग फिल्म का ये गाना है, आपको बताना है फिल्म प्रेम रोग के संगीतकार कौन थे।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, प्रेम रोग फिल्म का ये गाना और विविध भारती की गीतमाला का सफर, इतना ही ये भी नहीं कह सकते कि कल इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी। कल सुरीला सफर कार्यक्रम का आगाज होगा। आप सभी इस कार्यक्रम के स्वागत के लिए तैयार रहिएगा। हमें उम्मीद है कि ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, ये आपको पसंद आएगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे साधना फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल एन दत्त के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे में अगला गीत तलाक फिल्म से आशा भोसले की आवाज में कवि प्रदीप के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत तीसरी गली फिल्म से हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे में आइए सुनते हैं अगला गीत दोस्ती फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

0: आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन,

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं स्वर्ण सुंदरी फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में, भरत व्यास के बोल आदि नारायण राव ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे में भागवत फिल्म के इस गीत को, जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर और साथियों ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सरदार सिंह के संगीत।

फागुन फिल्म का यह गीत सुनने वाले हैं हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में, कमर जलालाबादी के बोल हैं, ओपी नैयर का है संगीत।

हम सुन रहे थे परवरिश फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडेकर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत, जो कि है गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का है संगीत।

हम सुन रहे थे गीत मालिक फिल्म से, शमशाद बेगम की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल और गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

आज समझे।

0: हम सुन रहे थे ये गीत काला पानी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में बजरूल सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देवबर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: बाजू

0: का नाम आड़ी तिरछी चला चला आके झूम आड़ी तिरछी चलाई चलाई आके झूम
1: आड़ी चला चला के झूम तिरछी चला चला के झूम बाजू।

0: चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

हम सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से यह गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे गीताई मिलन की बेला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आज का यह सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हेलो सहेली कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो सहेली। सुनने वाली सखियों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हेलो सहेली कार्यक्रम में हम समसामयिक विषयों पर बातचीत करते हैं और इस समय सबसे ज्वलंत और समसामयिक विषय है क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी। हाँ, गर्मी। तो आज का ये कार्यक्रम है गर्मी स्पेशल। कार्यक्रम में हमारी सखियों ने भी अपने अपने शहर के मौसम से हमें अवगत कराया है। तो आइए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली कार्यक्रम। हेलो
1: हेलो
0: हेलो एरी सखी, कौन सखी बोल रही है, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं स्वाति बोल रही हूँ, स्वाति शर्मा।
0: स्वाति शर्मा, हमारे इस कार्यक्रम की पहली सखी हैं आप, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: कैसी हैं
1: आप? तो मंदाकिनी जी बोल रही हैं, है ना?
0: जी, कोई शक आपको?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी आवाज मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ।
0: अरे अरे अरे। अच्छा, आप कार्यक्रम सुनती हैं रेडियो पे?
1: जी, मैं बहुत बार सुनती हूँ ये कार्यक्रम, जब भी मुझे समय मिलता है मैं जरूर सुनती हूँ, मिस नहीं करती हूँ इसको।
0: अच्छा,
1: है ना?
0: अच्छा, कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम?
1: ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है कि सारी सखियां मिलकर के हर विषय पे बात करती हैं।
0: हाँ,
1: और अपने पसंदीदा गाने सुनती हैं, अपने मन की बात आपसे करती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये बताइए हमको स्वाति कि देश भर के तमाम हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी है, आप अपने शहर के बारे में बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं, आपने ये तो बताया ही नहीं।
1: जी, मैं राजस्थान बीकानेर से बात कर रही हूँ आपसे। और हमारे यहाँ अभी गर्मी जो है वो एकदम प्रचंड रूप ले रखा है उसने अपना।
0: अच्छा,
1: हाँ, और मतलब कि 46-48 आ रहा है अभी टेम्परेचर,
0: अच्छा,
1: और इन दिनों हाँ गर्मी सहन करनी बहुत मुश्किल हो रही है। और हम लोग इसका ध्यान भी पूरा रख रहे हैं
0: कैसे?
1: कि जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं, एक तो ये ध्यान रखते हैं, और खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं
0: क्या खाते हैं इन दिनों, क्या खाते पीते हैं?
1: जी, एक तो पानी का पूरा ध्यान रखते हैं कि
0: बिल्कुल।
1: पानी या नींबू पानी और छाछ,
0: अच्छा,
1: ये हम लोग रेगुलर लेते हैं और पूरे परिवार को देते हैं मंदाकिनी जी इसको, कि भाई सुबह निकल रहे हैं तो जिसको जो पसंद आए, नींबू पानी आए या छाछ आए। और हमारे यहाँ का एक देसी पेय पदार्थ है राबड़ी।
0: राबड़ी, अच्छा
1: जी, वो बाजरे के आटे को इसमें छाछ में डाल करके उसको पका करके बनाते हैं,
0: अच्छा उससे क्या होता है?
1: उससे पेट में गर्मी नहीं होती है।
0: अच्छा,
1: और
0: यानी लू
1: उससे
0: और तापमान जब बढ़ता है, लू का मौसम
1: जी
0: होता है।
1: बिल्कुल लू नहीं लगती है उससे, यदि वो घर से और उसमें प्याज डाल ले, कच्चा प्याज, तो और फायदा करता है।
0: अच्छा, तो आपके
1: जी
0: घर में ये पेय पदार्थ अक्सर बनता रहता होगा?
1: जी हाँ, हम उसको 2-3 दिनों के लिए पहले ही बना के रख लेते हैं, और ठंडा हो जाता है
0: हाँ,
1: तो फिर उसमें डेली पतली छाछ या दही, जो भी पसंद आए बच्चों को और बाकी परिवार के लोगों को, तो वो मिला करके उसको पतला कर करके और उनको देते हैं। घर से
0: अच्छा,
1: निकलते टाइम वो पी लेते हैं तो लू लगने का जो डर है वो एकदम खत्म हो जाता है।
0: अच्छा यानी कि आप इसको बनाकर फ्रिज में रख लेती हैं?
1: जी जी

0: तो ये खराब नहीं होता फ्रिज में?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं होता। और ऐसे मंदाकिनी जी के घर के लोगों को ये बहुत पसंद आता है, तो वो बचता तो है ही नहीं।
0: अच्छा।
1: स्टोर करने का है नहीं, आगे से आगे बनता रहता है वो। बेसन का सत्तू भी हम लोग बनाते हैं, उसको भी पीने से आपको कम लगती है गर्मी और आपका पेट भरा हुआ रहता है।
0: अच्छा, यानी कि हम जो चटपटी चीजें हैं या तेलीय चीजें हैं, तली फली चीजें खाने से भी बच जाते हैं ना?
1: जी हाँ
0: हाँ, ये अच्छी
1: बिल्कुल।
0: बात आपने बताई। स्वाति, इसके अलावा आपके क्या शौक है?
1: जी मेरे को गाने का शौक है और बचपन में मैं डांस भी किया करती थी, कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। ग्रेजुएशन तक मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा है।
0: अच्छा, और उसके अलावा
1: जी
0: और क्या बजाती हैं, गाती हैं, कुछ है ऐसा?
1: ऐसे बस रूटीन में ढोलक बजा लेती हूँ सबके साथ में बैठ करके, अपने सहेलियों के साथ जब भी बैठते हैं, कभी कोई गीत वगैरह गाए, गाने गाए या भजन गाए सबने बैठ के, तो ढोलक बजा लेती हूँ थोड़ा बहुत।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो चलिए, जब आपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, तो इस म्यूजिक का एक छोटा सा नमूना हमें सुनाइए, कोई पेश हो जाए।
1: जी, एक क्लासिकल में भैरवी की एक छोटी सी बंदिश सुनाऊं मैं आपको?
0: हाँ बिल्कुल सुनाइए।
1: मैंने जिनसे सीखा था इमामुद्दीन जी खान साहब, उन्होंने मुझे सिखाया था। बाय।

0: क्या बात है, क्या बात है। किस राग पर आधारित है ये बंदिश?
1: जी ये भैरवी पर है
0: राग भैरवी पर आधारित है। बहुत सुंदर,
1: जी।
0: बहुत खूब। अच्छा बताइए स्वाति, अब आपकी पसंद का गीत हमें बताइए।
1: जी जरूर, मैं सुनना चाहूंगी लता जी को फिल्म किनारा का गीत। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा।
0: तो आपकी आवाज हमें पहचान रहेगी इस आवाज की, और
1: जी थैंक यू।
0: अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, कौन सखी फरमा रही हैं आज?
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, डेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: अरे वाह, क्या बात है, आप पूनम बोल रही हैं। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पूनम कैसी हैं आप?
1: बहुत ही अच्छे हैं, मजेदार गर्मी का मजा लेते हुए आपको कॉल कर रहे हैं मैडम जी।
0: आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली है कि शानदार गर्मी हो रही है और उसका हम लुत्फ उठा रहे हैं, है ना?
1: जी जी हर मौसम का अपना मजा है मैडम जी।
0: हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो आपका ये जो बस्तर है, गांव ये कहाँ पड़ता है छत्तीसगढ़ में, बताइए हमें।
1: चित्रकूट एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है मैडम जी, नियाग्रा बोलते हैं इसको, जलप्रपात के लिए हमेशा बारों में ना यहाँ पे सैलानी आते रहते हैं।
0: बिल्कुल, तो अभी गर्मी के इस मौसम में भी सैलानी आ रहे हैं?
1: हाँ, बारह महीने आते हैं मैडम जी, अभी तो और ज्यादा आ रहे हैं, और पहले जैसा नहीं है ना, अभी तो रहने खाने सबका वो ढाबा है, होटल है, सब तैयार है अभी।
0: पूनम जी बताइए, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: एक पुरानी फिल्म है मैडम जी, दो गुलाब। हाँ, उस फिल्म में आशा भोसले जी एंड किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत है, उसके बोल कुछ इस प्रकार है मैडम जी, मैं थोड़ा गुनगुना के बता दूँ।
0: बिल्कुल।
1: मेरे लिए तू बनी,
0: अरे वाह,
1: तेरे लिए मैं बना, ऐसा कुछ गीत है मैडम जी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: इस अंतराल के बाद आप सभी का हेलो सहेली कार्यक्रम में स्वागत है। हेलो हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती
1: जी।
0: हेलो, कौन बोल रही हैं?
1: कृष्णा भाई लोबंसी बोल रही मैं।
0: कहाँ से बोल रही हैं कृष्णा जी?
1: ग्राम कालापाठा से।
0: अच्छा, खंडवा से?
1: हाँ, खंडवा जिला लगता है जी।
0: अच्छा, हाँ, कैसा है आपका गांव कृष्णा जी?
1: जी अच्छा है।
0: और आप क्या करती हैं?
1: खेती करती हूँ जी मैं।
0: अच्छा, खेती बाड़ी करती हैं। तो
1: हाँ,
0: आपके गांव में तो बहुत गर्मी पड़ रही होगी अभी तो।
1: बहुत गर्मी पड़ रही दीदी, बहुत गर्मी
0: है ना। तो आप खेती बाड़ी करती हैं तो आपके पास पशुधन भी होगा।
1: हाँ, पशु भी है जी।
0: तो तेज गर्मी का जो प्रकोप है किस तरह से फसलों पर पशुधन पर पड़ता है आप बता सकती हैं?
1: हाँ, परेशान तो बहुत होना पड़ता है जी। उनको लपट से बचाना पड़ता है, 3 बार पानी पिलाते हैं, चारा मुहूर्त सब करते हैं। मेरे बच्चे भी हैं, 2 लड़के हैं, उनके लड़के के लड़के भी 2 हैं।
0: तो आपके पास पशुधन में क्या है, गाय भैंस क्या है?
1: गाय है दीदी,
0: गाय है। कितनी गाय है?
1: 4 गाय।
0: 4 गाय है?
1: 4 है।
0: अरे
1: जी।
0: फिर तो ये 4 बच्चों जैसी हो गई बात। और कि आपके अपने बच्चों के अलावा ये और आपको
1: हाँ
0: पालना होता है।
1: हाँ जी, बच्चों की तरह पालना पड़ता उनको।
0: बताइए आपको कौन सा गीत सुनवाएं कृष्णा जी?
1: नदिया के पार वाला दी, वो ने दिशा में लेके चला रे।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना है ये तो।
1: जी
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती।
1: हेलो
0: हेलो, कौन से की बोल रही हैं?
1: मैं सरोज दलाल बोल रही हूँ, उज्जैन से।
0: अरे सरोज जी, स्वागत है आपका। कैसी हैं आप उज्जैन में?
1: अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ दीदी।
0: बढ़िया हैं।
1: हाँ,
0: और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: कुछ नहीं, गर्मी पड़ रही है, गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
0: हम जिनसे भी बात कर रहे हैं वो सब यही कह रही हैं सखियां कि गर्मी का मजा ले रहे हैं हम लोग, है ना?
1: हाँ, और क्या, दिन भर पंखे चलते रहते हैं हर कमरे में।
0: फिर भी गर्मी से छुटकारा नहीं मिलता है ना?
1: हाँ, नहीं मिलता है ना छुटकारा,
0: हाँ, तो अभी तो देखिए,
1: गर्मी बहुत ज्यादा गिरती है। हाँ,
0: हाँ बहुत गर्मी हो रही है। घर से बाहर निकलते समय ध्यान रखिएगा कि खासतौर से 12 से 4 का जो समय है उसमें आप बाहर कम से कम निकले। अच्छा, बच्चे कहाँ हैं आपके?
1: मेरी बच्ची एक ही है, अभी इंदौर वाली आई है, बड़ी वाली अभी आई थी, 15 दिन रह के चली गई मुंबई।
0: अच्छा, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी आप सरोज जी?
1: मेरे दामाद जी का जन्मदिन है।
0: अच्छा, आपके दामाद का जन्मदिन है,
1: हाँ
0: तो
1: दीदी दीदी
0: आप कहें तो हम अपनी तरफ से एक बहुत ही सुंदर गीत सुनवा दें आपको जन्मदिन का, आपके दामाद के
1: दीदी
0: लिए।
1: बहुत बढ़िया जी जी दीदी।
0: चलिए तो सुनते हैं फिल्म रखवाला का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: हेलो हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन मोहतरमा फरमा रही हैं?
1: मैम, मैं नीलफर बात कर रही हूँ श्रीनगर कश्मीर से।
0: आहा, कितना सुकून मिला है हमें श्रीनगर कश्मीर का नाम सुन के।
1: जी थैंक यू मैम।
0: पूछिए क्यों।
1: क्योंकि यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा ही रहता है ना, थोड़ी ना
0: बिल्कुल।
1: ना महीने तो यहाँ पे ठंड ही रहती है, 3 महीने गर्मी रहती है यहाँ पे।
0: हाँ,
1: और इस वक्त भी थोड़ा सा मौसम ठंडा ही है, क्योंकि इस मतलब महीने में, अप्रैल के महीने में यहाँ पे बर्फबारी भी हो गई, जो कि विंटर में नहीं हुई थी यहाँ पे, जबकि वो विंटर में होती है बर्फबारी। लेकिन अब मतलब चेंज हुआ है ना, मतलब अब ऐसा होता नहीं है। विंटर में तो यहाँ पे खुश मौसम रहता है, और मार्च के महीने से फिर बारिश बर्फबारी शुरू होती है बीच बीच में। तो अभी यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा है, इस वक्त भी ठंड ही है, तो यहाँ पे हम खिड़कियां बंद कर ही कहीं बैठे
0: अरे इसीलिए मैंने कहा
1: हैं।
0: कि बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, क्योंकि अब तक हम जितनी बहनों से बात कर चुके हैं ना, सबके शहरों में
1: जी मैम,
0: भीषण गर्मी हो रही है, गर्मी से हाहाकार हो रही है, परेशान है सारे लोग। और आपने श्रीनगर
1: जी मैम,
0: कश्मीर की ठंडक का बात कह दी, मान लीजिए हमें लग रहा है कि हम इतनी भयंकर गर्मी में ठंडी फुहार में नहा लिए हैं।
1: जी मैम, जी थैंक यू मैम। आज दूसरी बार मेरा कॉल लगा है ना, तो खुशी हो रही है आपसे बात करके, और मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, समझ में नहीं आता कि बात कहाँ से शुरू करूँ। मुझे गाना सुनना भी अच्छा लगता है, और गाना थोड़ा सा गाना भी अच्छा लगता
0: अरे
1: है,
0: वाह, चलिए बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती है और उसे गाकर बताइए हमें।
1: अभी हमें आप मुझे मैम प्लीज ये वाला गाना सुनाएगा, मैंने
0: कौन सा
1: ये
0: गाना?
1: मैं समझ सकती हूँ, धर्मात्मा फिल्म से है ना, वो लता जी की आवाज में,
0: जी,
1: मेरी गलियों में लोगों की यारी
0: यारी
1: करके।
0: लग गई। अरे वाह, हाँ। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: इस अंतराल के बाद आप सभी का हेलो सहेली कार्यक्रम में स्वागत है। हेलो हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो
0: हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
1: हेलो नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: जी मेरा नाम गीता है मैम, आप कैसे हैं मैम?
0: मैं अच्छी हूँ, ये तो बताइए कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी मैम जिला मुजफ्फरनगर से बोल रही
0: हूँ। अच्छा, मुजफ्फरनगर से बोल रही हैं, कैसी हैं आप बताइए? हम भी अच्छे हैं गर्मी के इस मौसम में। जैसे हमारी सखियां कह रही हैं कि गर्मी का आनंद उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं।
1: आप गर्मी हो रही है मैम?
0: गर्मी हो रही है आपके गांव में भी?
1: बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है मैम।
0: अच्छा, आप क्या करती हैं गीता?
1: जी मैम घर पे और खेत में काम करते हैं दोनों।
0: अच्छा, घर में और खेत में काम करते हैं। खेत आपका अपना है?
1: हाँ जी, हाँ जी अपना है।
0: और बताइए गीता जी, आपकी पसंद का आज गीत कौन सा है?
1: बाजीगर फिल्म का
0: कौन सा गाना?
1: छुपाना भी नहीं आता।
0: अच्छा, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन से की फरमा रही हैं? नाम बताइए अपना।
1: मैं रीवा एमपी से दीदी, मालती साकेत।
0: मालती जी बोल रही हैं रीवा से। आहा, एक और शहर जहां बहुत गर्मी होगी। होगी ना गर्मी वहाँ
1: दीदी? यहाँ तो बहुत जोर से गर्मी पड़ रही है। गर्मी की तो कोई कुछ पूछ नहीं, लाइक नहीं।
0: भाई आज तो हमारा ये स्पेशल है, गर्मी स्पेशल, और हम अपनी सभी सखियों से यही बात कर रहे हैं कि आपके शहर का मौसम कैसा है और आप कितना ध्यान रख रही हैं। तो वही हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए गर्मी के

0: इस मौसम में आप क्या कर रही हैं? बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चों की छुट्टियां हो गई या बच्चे छोटे हैं बड़े हैं, बताइए हमें।
1: बस एक दीदी 1 7 में है और 1 6 में है। तो
0: और
1: अभी तो मैं यहाँ रीवा में रूम लेके रहती हूँ। गाँव तो ऐसा मेरा चौराहा सीधी जिला के पास। वो मेरे पति वो नौकरी किए हैं कॉलेज में, वही रहती रीवा में रूम लेके।
0: चलिए अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: दिल वाले का गीता था जिसके लिए
0: अच्छा मरता था। चलिए आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ, आबिदा बानो निशार अहमद।
0: आबिदा बानो बोल रही है, कहाँ से?
1: मैं बड़ौदा जिला डबोई से बोल रही हूँ, मोरी भागल से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छी हूँ मैडम, बहुत ठीक ठाक हूँ मैं। गर्जन करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ।
0: हाउस वाइफ है तो बताइए, आपके शहर में गर्मी हो रही होगी, आपके घर में गर्मी पड़ती होगी, हाउस वाइफ को इस गर्मी में किस तरह से कामों को निपटाना पड़ता है?
1: मैडम क्या करने का, बहुत धूप लगते हैं यहाँ, कई जगह पे नहीं जा सकते। मेरे को तो माइग्रेन की तकलीफ है, बीमारी है मगज की, तो डॉक्टर ने मना किया है कि 5 बजे के बाद तुम्हारे को जो काम है ना वो करने का, तो मैं बाहर नहीं जा, घर के अंदर ही रहती हूँ।
0: बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि माइग्रेन की समस्या और बढ़ जाती है ना गर्मी के इस मौसम में।
1: मेरी आँख है ना, जमनी आँख, वो लाल हो जाती है।
0: अच्छा। कब से है आपको ये बीमारी?
1: अब तो अच्छा है, गए बरस ऐसा हो गया था।

0: मैं बड़ौदा की दवा करी ना तो फिर अच्छा हो गया। हाँ, पर मेरे को डॉक्टर ने मना किया है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा, तो गृहिणी को घर के सारे काम निपटाने भी पड़ते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि आप दिन भर काम करती हैं, पसीने से लथपथ हो जाती हैं, साड़ी के पल्लू से या कपड़ों से या चुन्नी से पसीने को पोंछती रहती हैं, लेकिन समय पर पानी नहीं पीती हैं, ऐसा करती हैं आप भी?
0: नहीं, पानी तो बहुत ज्यादा पीने का, अभी तो मेरे को पानी की बहुत जरूरत, पानी कोई भी जगह पे जाती हूँ बोतल साथ में लेके जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ वहाँ भी बोतल लेके जाती हूँ पानी का।
1: बिल्कुल, ये समझदारी करती है ना आप, चलिए बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। अब हम आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा देते हैं, बताइए।
0: मेरे को पाकीज़ा मूवी का गाना सुनना है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो,
1: वाह,
0: हमें तैयार।
1: अरे वाह, हम भी तैयार हैं आपको ये गीत सुनवाने के लिए, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती।
1: हेलो सहेली,
0: हेलो सहेली, कौन सहेली बोल रही हैं?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे।
0: क्या बात है, कितना लंबा नाम है आपका, वैष्णवी पांडुरंग मोरे। क्या करती हैं वैष्णवी आप?
1: मैं स्कूल में जाती हूँ।
0: पढ़ती हैं?
1: हाँ,
0: अरे कौन सी क्लास में?
1: 8th में जाती हूँ अब।
0: 7th पास होके अभी आप 8th में आई हैं?
1: हाँ
0: आहा, तो स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं?
1: हाँ हो
0: चलो
1: गई।
0: ये अच्छा हो गया, फिर आप गर्मी में बाहर निकलने से बच गई हैं, है ना?
1: हाँ,
0: निकलती हैं गर्मी में बाहर?
1: कभी कभी शाम को।

0: हाँ शाम को तो निकल सकती है, अभी दोपहर 12 से लेकर 4 बजे तक तो नहीं निकलती है?
1: नहीं, 5 बजे तक नहीं निकलती।
0: 5 बजे तक नहीं निकलती ना, बहुत ही प्यारी बच्ची हैं आप, समझदार है ना? और खूब पानी पीना है।
1: हाँ
0: पी रही है पानी?
1: हाँ पीती हूँ।
0: हाँ नींबू पानी भी पी सकती हैं, आपको पसंद है तो।
1: नींबू पानी पीती लेकिन कभी कभी।
0: कभी कभी पीती हो ना, बस आपको पीना है, ठीक है? पानी की कमी नहीं होनी है इस गर्मी में, ठीक है? अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: मेहंदी लगा के रखना।
0: मेहंदी लगा के रखना, ये वाला दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का?
1: हाँ
0: अरे चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती।
1: हेलो हेलो सहेली।
0: हेलो सहेली, कौन सहेली बोल रही हैं?
1: जी मैं जरीना बोल रही हूँ अहमदाबाद से।
0: अहमदाबाद से जरीना, आपका स्वागत है। जरीना जी कैसी हैं आप?
1: जी हम ठीक है, आप कैसे हो? आप बताइए अपने बारे में, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: जी।
0: बताइए क्या करती हैं आप?
1: जी मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती हूँ, अपने घर पे ही बेचती हूँ।
0: अच्छा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम बिजनेस करती हैं आप?
1: जी मैं बिजनेस करती हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, जैसे कि बैंगल्स है, फिर नेकलेस है वगैरह वगैरह, इयर रिंग्स है, इस तरीके से।
0: अच्छा, उन सबको लेकर आती हैं और उस सामान को बेचती हैं?
1: जी मुंबई से ही लेकर आते हैं।
0: अच्छा, मुंबई से ही लेने जाती हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने घर पे कोई शॉप खोल रखी है या वैसे ही घर में लोग आते हैं आपके पास?
1: हाँ नहीं नहीं नहीं शॉप खोल रखी है और घर पे भी करते हैं और घर के बाहर ही शॉप भी है।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या प्रचलन ज्यादा है?
1: क्योंकि देखिए वो अभी जो गर्मी चल रही है ना, तो हम लोग कुछ हल्का हल्का सा ही बेचते हैं, जैसे कि रिंग्स है वगैरह, बैंगल्स है वगैरह, क्योंकि अभी गर्मी है तो उसका क्या चलन ज्यादा नहीं रहता है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जब कहीं जाना होता है तैयार होके शादी में समारोह में, तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी ही नहीं जाती है जरीना जी, खाने को दौड़ती है।
1: जी हाँ,
0: है ना।
1: हम लोग उसको किस तरीके से पहन सकते हैं, जैसे कि हल्की सी डायमंड का चेन हो गया, हल्की सी इयर रिंग्स हो गया, या हल्की सी जो रिंग्स होता है वो हो गया, इस तरीके से हम इसको अगर पहनते हैं ना, तो वो क्या है ना, ज्यादा भार नहीं लगता है। और उसमें कैसा है कि हमको तो कुछ समझ के पहनना है, पूरा अपने शरीर को लाद नहीं लेना है कि उसके हम ऐसा लगे कि नहीं हमें ये उतारना है वो उतारना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, हल्की से पहनना चाहिए और कॉटन यूज करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में कॉटन का चलन ज्यादा होना चाहिए। और खास करके खादी का जो प्रोडक्ट है उसे हमें खरीदना है, लोकल फॉर वोकल।
0: जी जरीना जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपके लिए आपकी खिदमत में कौन सा गीत सुनवाएं?
1: मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में ना मुझे ढाई अक्षर प्रेम की का गीत सुनना है, टाइटल सॉन्ग जो है ना वो वाला,
0: ढाई अक्षर प्रेम का।
1: जी ढाई अक्षर प्रेम की,
0: ढाई अक्षर प्रेम की फिल्म का गाना आपको टाइटल सॉन्ग में सुनना है।
1: जी
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो ये था आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। आज जिन सखियों की कॉल लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक वे इस कार्यक्रम में हमें कॉल न करें, ताकि अन्य सखियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्रदान हो सके। हेलो सहेली के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक मंगलवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02240024662, दूसरा नंबर 02228670288। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें, हेलो सहेली कार्यक्रम में आज का ये सफर आपने तय किया अपनी सखी मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संपादन सहयोग नम्रता टिकोले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

रहती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुति कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: तरानी नई पुरानी इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। बलराज साहनी का जन्मदिन है। मन्ना डे को हम याद करेंगे आज के दिन। और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का जन्मदिन है। तो आज इस कार्यक्रम में यानी तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप इन सभी कलाकारों की फिल्मों के गीत सुनने जा रहे हैं।
1: रोशन हो जिससे दुनिया, तू वो जलाल बन जा, जिसकी मिसाल ना हो तू वो मिसाल बन जा। इतना असर हो धरती पे तेरे पसीने से कि गंगा की धार फूटे पत्थर के सीने से।
0: सोनू कोमी के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं वर्मा मलिक का लिखा गीत। आवाजें मोहम्मद रफी, आशा भोंसले, दिलराज कौर, कुमार सोनिक और साथियों की है। फिल्म का नाम है भूख।

0: सेना जारी, अकड़ वो टूटी सारी, तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून

है लानत चोर बाजारी के दौलत है बीमारी है लानत चोर बाजारी। अरे छोड़ दो मारा मारी और

0: झगड़ा प्यारे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो कि खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
1: खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
0: नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।

0: लो कसम इसे हाथ न लगाएंगे,
1: हाथ न लगाएंगे, हाथ न लगाएंगे। तू पसीने की जो मिले तो खा।

0: होगा हर रोज रात 10 बजे।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
0: दिन में 1 बजे से 2 बजे तक विविध भारती लेकर आ रहा है अपना नया कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब होगा हर रोज दिन में 2:30 से 3 बजे तक। शाम 6:35 से 6:45 तक एक नया कार्यक्रम संध्या रंजन। आपको बता दें रंग तरंग कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 11 बजे से 12 बजे तक होगा।
2: ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो।
0: हर शनिवार दिन में 11:30 पर विविध भारती लेकर आ रहा है अपना नया कार्यक्रम मैटिनी शो। रविवार दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच सुनिए विविधा। श्रोताओं के लिए एक और खुशखबरी, अब आप चिट्ठियां लिखकर कर सकते हैं अपने मन चाहे गीत की फरमाइश। जी हाँ, मन चाहे गीत कार्यक्रम की वापसी हो रही है। ये कार्यक्रम सुना जा सकता है हर शनिवार और रविवार दिन में 3 बजे से 3:30 के बीच। और हाँ, विविध भारती पर लौट रहे हैं सेल्यूलॉइड के सितारे। ये कार्यक्रम अब होगा हर मंगलवार शाम 4 बजे।
3: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: 1 मई से विविध भारती के कार्यक्रमों में हो रहे हैं कुछ बदलाव।

0: अभी आपने किशोर कुमार और साथियों को सुना। फिल्म का नाम था खून पसीना। गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: 1 मई से विविध भारती के कार्यक्रमों में हो रहे हैं कुछ बदलाव। अब झरोखा यानी कार्यक्रम विवरण होगा हर रोज सुबह 6:30 पर और शाम 6:30 पर। भारत की गूंज कार्यक्रम की जगह अब हर रोज सुबह 8:30 पर होगा कार्यक्रम चित्रलोक। आज के फनकार कार्यक्रम अब अपने पुराने समय पर सुबह और शाम 9:30 पर सुना जा सकेगा और छाया गीत कार्यक्रम

छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या

तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही यार के हंसते ही मैं

अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम था जंजीर, गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।

तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ तनम मैं तेरा आशिक जावदा, ओ तनम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है।

यह आवाज़ थी मन्ना डे की। फिल्म का नाम था सीमा। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने बस कुछ ही पलों में।

ये था फिल्म पीके का गाना। आवाजें शान और श्रेया घोषाल की थी, स्वानंद किरगिरे के बोल थे और शांतनु मोइत्रा की धुन।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: अभी आपने विशाल ददलानी, शालमली खुलगड़े और इशिरा की आवाजों में फिल्म सुल्तान का ये गीत सुना। इनका साथ दे रहे थे बादशाह। गीत को इरशाद कामिल ने लिखा और विशाल शेखर ने संगीतबद्ध किया था।

किशोर कुमार की आवाज में अभी अपनी फिल्म झील के उस पार का ये गीत सुना। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार राहुल देव बर्मन थे।

मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें? राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ।

0: और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।
2: और आइए अब सुनते हैं फिल्म सड़क का गीत, आवाजें अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की।

कार्यक्रम का अगला गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में है। इंदिवर की रचना, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अपराध।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का तराने नए पुराने ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: तराने